0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आप

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव, एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो DS।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं और आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश

0: दोस्तों, हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है। आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी।

0: हेलो
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते,
1: नाम क्या है आपका?
0: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, मैं ग्राम अकबरपुर जिला विदिशा मध्य प्रदेश एमपी से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: द्वारा अध्यापन
0: फिल्म का नाम है
2: सुसज्जित अलग अलग
0: कुली नंबर वन
2: जैसे कंप्यूटर लैब।
0: गाने के बोल हैं जीएसटी दोपहरी में पांव जले है रानी पांव जले है।
1: ओके सर सुना रहे आपकी फरमाइश करिएगा ना रेडियो एफएम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद,
1: वेलकम सर।
2: और सुरक्षित

0: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम अय्यूब सलमानी मैम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: ग्रेटर सिंगापुर सिटी से मैम।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज गाना सुनना चाहते हैं एल्बम सॉन्ग है मैम, वो वाला कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: भगवान है।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग मैम।
1: हाँ जी मैम, नाम क्या है आपका?
2: जी शहनाज।
1: कहाँ से बात कर रहे?
2: संजय कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
2: जालिमा।
1: जालिमा,
2: हाँ
1: ओके मैम।
2: रईस मूवी का सॉन्ग है।
1: रईस मूवी का?
2: रईस रईस
1: रईस मूवी का
2: जी।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवहन।
2: थैंक यू।
1: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम दूसरा मीना, ग्राम तिल्लुखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है चरस, और गाने की बोल है कि आजा तेरी याद आई।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडी।
1: धन्यवाद मेरी बहन।

0: हेलो
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते जी, चौधरी में एकदम खत्म हो गई।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना है या टू अब तो आ गया।
1: कौन सा सर?
0: या टू अब तो आ गया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: नाम तो बाबू खान है।
1: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर जी लगेरे की कोठी के पास।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: ये चांद कोई दीवाना है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो DS
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त इशी मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झान से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 10:30 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो DS पर।

0: आपका?
1: फुला देवी।
0: फुला देवी जी कहाँ से बात करें? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मेरा बदन की भेंट से डाई तो को पुकारा मेरा प्यार।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो,

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आरबी भूजन
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना?
1: बन के तेरा जोगी।

0: जगह है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: बत्ती की कमर पे चोरा लो 30 का रखे सामान।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: माही खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो माही जी?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हमारी अधूरी कहानी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: कहाँ से बात कर रहे हो गुलशन जी?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: निमोड़ा सॉन्ग।
0: निमोड़ा सॉन्ग?
1: हाँ
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।
2: हेलो

0: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम सोहेल सैसी है मैडम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: जी गंगापुर से, फिल्म राजी कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: जी मैडम आज गाना सुनना चाहते हैं, बे इरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बेटे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: मैडम बहुत तेज व्यस्त चल रहा था।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर 89.6 पे रेडियो DS
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: DS साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: हेलो,
4: हाँ जी, नाम
3: है राजराज शर्मा है मेरा नाम।
4: कौन से बात कर रहे सर?
3: गंगापुर सिटी से।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: हम तो ये परदेसी परदेसी हो गए डबली वाले गाने पे।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: शिवम।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: रोहतक थ्री।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।
2: रोहतक पर जब मैंने अपना कब चमाया और दोनों चूहों पर अपना जाल बिछाया।

0: सागर।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: राजस्थान पुरानी निगामा।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दोस्ती इंतहा लेती है दोस्त का।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: जी नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: संजीराम गुजर बोल रहा हूँ, गाँव भटिया से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जी गाने की बोल रहे हैं, जब तक मैंने समझा जीवन क्या, जब तक जीवन बीत गया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डिया। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम है।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दीदी तेरा देवर दीवाना।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मिराज जीन।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: मैं पहलगाम कश्मीर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: ये दिलवाले का साथ हो जन्म में तुझे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: नाम राजेंद्र मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: लाल परी।
1: ओके सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: अनिल शर्मा।
1: कहाँ से बात करो सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फीलिंग सॉन्ग चला दो मैम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6 पे रेडियो DS।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

तो वक्त हो चुका है 11:34 का। इस वक्त आप मेरे साथ डोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैडम जी।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: जम्मू से केशव शर्मा।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैडम सुना, मुझे फिल्म थी

0: हाँ जी सर,
1: साथ में मैडम जी मेरी सुषमा रानी बच्चे राजस्थान से पूरी वर्मा जी और हिमाचल से है गोल्डी जी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं सबकी फरमाइश पड़ेगा ना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हाँ दीदी नमस्ते।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: गंगाधर सावनकर।
1: सर कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बेगाना फिल्म का मतलब ही है लोग यहाँ के, मतलब ही है जाना, ये गाना सुना है।
1: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडी डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: लतीफ अहमद रैना, कश्मीर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: राजन फिल्म का।
1: राजन मूवी का?
0: हाँ, कोई भी।
1: ओके सर, सुनाने आपकी फरमाइश पर गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: वेलकम सर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो।

0: हेलो,
1: नाम क्या है आपका?
0: पूनम।
1: क्या?
0: पूनम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो मैम?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: बुलेट पे मारे गए।

0: कौन सा गाना है?
1: कितना टाइम लगेगा?
0: चल जाएगा ना।
2: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: निकिता।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहिए?
2: बिछड़न सॉन्ग।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हाँ सर, नाम क्या है आपका?
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: रफी खान।
0: कहाँ से?
1: लोगों मस्जिद पीछे से।
0: कौन सा गाना सुनना था?
1: मेरी जिंदगी है तू।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना।
1: बिल्कुल सुना।

0: जी योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाना आप हमको फिल्म और गुरु से उपलब्ध होगा सुनवा देंगे, बरसो रे मेघा मेघा बरसो।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: धन्यवाद।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कशिश।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मुमताज सॉन्ग।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश पर ही।

0: मैम नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: जयंता सोमकुमार दोरिया मैम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो, नाम क्या है सर पहले आपका?
0: आयुष शर्मा दोरिया बोल के बात कर रहा हूँ मैम।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: जयंता।
1: कौन सा?
0: जयंता।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करिएगा ना। रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: निशा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: दुनियापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: आजा मेरे सावन।
1: कौन सा?
0: मेरी चाहत के सावन में

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नीतू सिंह।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: करौली से।
1: कहाँ, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बापू दे राडा।
1: बापू दे
0: राडा।
1: राडा
0: नहीं
1: तो
0: लाडला।
1: लाडला।
0: हाँ।
1: बापू दे लाडला।
0: हाँ।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: मैडम मेरा नाम महेश चंद्र मीना है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: बावनवास तहसील से, दाता सूती गांव है मैडम।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: वो दाग दी फायर का गाना, दिल दीवाना।
0: ओके सर, सुना है।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: कुलदीप।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बाईपास से निकला छोरा।
1: कौन सा?
0: बाईपास से निकला छोरा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम पर्व है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैं गंगापुर से थी, नसिया कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी? हेलो,
0: पल पल चला दो।
1: ओके मैम, सुन रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अमन मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: बुलिया बुलिया
0: बुलिया। ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: परी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मतलब मेरा इतना लाडो लड़ावा मोए सोन परी राख है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:34 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे थे 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों मिलते हैं 1 बजे नए तरानों के साथ। सुनते रहिए फिल्म संगीत सॉन्ग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से, सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त ईशी मीना एवं डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।

गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, एक बज चुके इस वक्त। आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। और दोस्तों अभी आप थोड़ी देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:11 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीच में बातें करते हैं गर्मियों के मौसम में हमें क्या खाना चाहिए। गर्मियों के मौसम

0: गर्मियों के मौसम में हम अपने साथ लू, धूप, पसीना और शरीर में पानी की कमी की जैसी समस्या लेकर आती है। हम अपने थोड़ी सी सावधानी को रखेंगे तो पूरा मौसम हमें स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। सबसे पहले दिन में हमें लगभग 2 या 3 से 3 या 5 लीटर पानी पिए। घर से बाहर निकलते समय हमेशा हमें पानी की बोतल लेके जाए। गर्मियों के मौसम में पौष्टिक वे हल्का भोजन करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में तला भुना वे मसालेदार खाना कम खाए, इससे इसकी वजह दाल, हरी सब्जी, सलाद, दही, छाछ और आदि सामग्री का सेवन करें। गर्मियों के मौसम में कौन कौन से फल ज्यादा हमारे शरीर को फायदेमंद होते हैं? तरबूज, खरबूजा, आम, खीरा, ककड़ी, संतरा, पपीता जैसे शरीर को पानी व ऊर्जा देते हैं। गर्मियों के मौसम में हमें छाछ की या नींबू पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। शरीर को ठंडक देता है और पानी की कमी नहीं होने देते हैं। गर्मियों के मौसम में धूप से बचाव करें। दोपहर में 12 से 3 बजे तक की धूप में कम निकले। यदि निकलना जरूरी हो तो टोपी या छाता या सूती कपड़ा पहनकर या ओढ़कर निकले। गर्मियों के मौसम में हल्का वे सूती कपड़ा पहने। हल्का वे सफेद या हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े गर्मी से बचाव करते हैं। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। रोज नहाएं, हाथ धोए, खाना खाने से पहले अपने हाथ पैरों को धो लें। ठंडे पानी का सेवन, घर का बना नींबू पानी या नारियल या सादा पानी या छाछ बेहतर होता है, जो बहुत ज्यादा ठंड या अधिक निपे करता है हमारे शरीर। नियमानुसार व्यायाम का योग करें। सुबह या शाम के समय हल्की से प्राणायाम या व्यायाम योगा करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ व मन शांत रहता है। गर्मियों के मौसम में पर्याप्त नींद ले। 7 या 8 घंटे की नींद जरूरी है।
1: 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
0: सुनते हैं नए तराने कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111। इसके
3: दोस्तों, वक्त हो चुका है, 2:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम।
3: तो वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे, सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:28 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक
4: परसेंट से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेरा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
1: सुनते रहे
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर

गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर 89.6

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
4: दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: जी चौधरी अर्ज कर रहा हूँ आवी जी से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना बढ़िया सुनाएंगे।
1: हाँ जी बताइए।
0: इसी हरी गुलाब की।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: दीदी, सादर नमस्कार।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
0: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
1: मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। रेडियो सुनना शौक है, आपसे वार्तालाप करके अच्छा लगता है
0: जी। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी और गीत के बोल हैं परदेशी परदेशी जाना नहीं।
0: ओ सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, टेक केयर।

0: जय भवानी।
1: जय भवानी मामा जी, नाम क्या है आपका?
0: विमल शर्मा, मऊकला, गंगापुर सिटी, राजस्थान।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मामा जी?
0: एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
1: ओके मामा जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: नमस्ते, मेरा नाम साजिद है।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाना है मेरी जान अपने आशिक को सताना किससे सीखा है।
0: कौन सा सर, थोड़ा तेज बोल सकता हूँ?
1: मेरी जान अपने आशिक को सताना किससे सीखा है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हाँ जी
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते बहन जी।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: नाम तुलसी राम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: झूम झूम झूम झूम नाच मयूरी।
1: ओके सर सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मेरी बहन, धन्यवाद।
1: वेलकम सर।

0: जी, नाम क्या है आपका?
1: नाम बाबू खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: इस प्यार से मेरी तरफ देखो प्यार हो जाएगा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
1: सोहेल सैफी नाम
0: मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो?
1: ये राजीव कॉलोनी गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: ये गाने मूवी का नाम है तेरे नाम और गाने के बोले ओ जाना तेरा दिल खो जा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:57 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है ललित कुमार शर्मा जी ने। ललित कुमार शर्मा जी ने हमें कॉल किया है DS साइंस एकेडमी स्टाफ से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: पिंकी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: तेरी गैर बंदगी।
1: हेलो,
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
4: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
5: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का
1: क्या ऐप का मोमेंट। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: मेरी आवारगी तेरी दीवानगी।
1: ओके।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: अंधी राम बोल रहा हूँ, गांव भद्रका से।
0: और सर, गांव का कैसा मौसम हो रहा है भद्रका का? बारिश हो रही है नहीं हो रही
1: अभी?
0: बारिश हो रही है नहीं हो रही
1: जी? नहीं, बारिश नहीं हो रही, धूप खिल रही है, बादल भी हो जाते हैं कभी कभी।
0: हाँ सर, बारिश का तो बिल्कुल कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा
1: कोई आपको। और गर्मी भयंकर हो रही है,
0: यही तो मैं बोल रही हूँ। बारिश का तो कहीं अभी बूंद भी नहीं दिख रही
1: ना, ना, हाँ। और कल जो धूप खिल रही है और वैसे ही बूंद और बांदी होगी।
0: हाँ, थोड़ी बहुत हुई थी सर कल।
1: हाँ हाँ, कल हुई थी
0: शाम को।
1: हाँ जी।
0: हाँ सर, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाने के बोले हैं मतलब के सब रिश्ते नाते मतलब के यार।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार

0: यही।
1: कहाँ से बात कर रही हूँ?
2: शालदा मोल।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: पायल।
1: कौन सा?
2: पायल हनी सिंह का।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परेगा

0: कई बार मैं सोचता हूँ कि काश मैं घूंगा होता तो फिर ट्यून इन कर रखा 99.6 रेडियो डीएस और मैंने गूंगा नहीं घोंगा का, घोंगा इज अ हिंदी वर्ड फॉर स्नेल्स। और स्नेल क्यों बनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इनके पास एक ताकत है जो हम सब चाहेंगे कि काश ये ताकत हमारे पास भी होती। अब आप बोलोगे अरे भाई साहब स्नेल इतना छोटा सा स्नेल, इसके पास कौन सी ताकत? भैया सोने की ताकत। ये 3 साल तक बिना उठे, बिना आंखें खोले, बिना पलके झपकाए भैया सो सकते हैं। काश ये ताकत मेरे पास भी होता, आपके पास भी होता, पर फिलहाल मेरे पास एक ताकत है आपके लिए। अमेजिंग बैक टू बैक गाने प्ले करने वाला हूँ मैं रेडियो डीएस 89.6 पे,
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

0: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस।
1: बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस, और क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपनी बातें सुनना। जब भी मैं आता हूँ यार ये गाने रुक जाते, पर गाने आपके लिए प्ले करो। उससे पहले आज का शो यही तक था। जाने से पहले यही कहूंगा कि
2: नफरत भी नहीं है तुमसे, गुस्सा भी नहीं हूँ। ओहो, नफरत भी नहीं हूँ तुमसे, गुस्सा भी नहीं हूँ, और तुम्हारा जिंदगी का हिस्सा भी नहीं हूँ। हाय हाय हाय, इतना क्रिंज पॉसिबल नहीं है, पर अमेजिंग गाने सुनना पॉसिबल है। हां जी, तो कल फिर मिलूंगा सेम जगह सेम टाइम। फिलहाल सुनते रहो 89.6 रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: देखो दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, कब की होगी, लेकिन मेरी आपकी शुरुआत अभी होगी क्योंकि भैया शो अभी चालू होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ शायरी पेश करो। करो ना। अच्छा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए शायरी पेश करता हूँ। शायरी कुछ ऐसी है कि द वेट ऑफ वर्ड्स इज नोन बाय द वे वी स्पीक, अदरवाइज वेलकम इज रिटन ऑन द वॉल्स टू। ये शायरी नहीं है, लेकिन जो अब मैं प्ले करने वाला हूँ वो गाने जरूर है, तो फिर एंजॉय करो, आराम से बैठो। बैक टू बैक चार गाने आपके लिए।
2: गंगापुर सिटी की धरती,

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई

0: गौर फरमाना मेरी बात पे कि फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, अब आए साथ में खुशियां ही खुशियां आई आई हाई आई हाई आई हाई। मेरी शायरी की तरह आपका दिन भैया बुरा नहीं, बहुत ही शानदार जाने वाले, क्योंकि मैं प्ले करने वाला हूँ आपके लिए अमेजिंग बैक टू बैक चार गाने ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस
1: गंगापुर स्थिति की धरती।

0: क्या बात है, क्या बात है। जिस डेडिकेशन के साथ आपने इस गाने को एंजॉय किया, उसी डेडिकेशन के साथ मैं चाहता हूँ कि आप इन लाइंस को भी एंजॉय करो। चलो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि कह दिया उसने अलविदा, कह दिया उसने अलविदा, जिसने कभी जुदा होने के बारे में सोचा भी नहीं था। वाह वाह वाह, अरे अरे अरे, नहीं मैं आपको डेडिकेट नहीं कर रहा ये लाइंस, ना मैं खुद को कर रहा हूँ। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था, दोबारा मिलेंगे कल। फिलहाल आप ट्यून इन रहो 89.6 रेडियो डीएस पे,
1: गंगापुर सिटी की धरती रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे रा, तेरा
3: रे रा। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS।

0: बीच में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: नाम में कितनी शक्ति है सोचिए। अगर आपको कोई जोर जोर से बुलाए तो क्या आप पलट कर नहीं देखेंगे? क्या बार बार कोई धीरे धीरे आपका नाम ले तो एक बार मुड़कर नहीं देखेंगे? मैं हूँ आरजे खुशी। सोचिए अगर हमारे नाम के साथ में ऐसा है तो क्या ऊपर वाले का नाम लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता होगा? ये हमें तब तक लगता है जब तक हम ऊपर वाले का नाम नहीं लेते। एक बार अगर आपने नाम लेना शुरू किया ना तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो आपकी सुन भी रहा है। अभी तक हमको ऐसा लगता है कि वो हमारी सुन ही नहीं रहा है, तो आप सोचिए क्या आप भी अपने सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए एक बार सच्चा दिल भी साइड में रख दीजिए, क्या आप केवल पुकार भी रहे हैं? नहीं ना। इसलिए जितनी बार आप उनको पुकारेंगे उतनी बार आपको महसूस होने लगेगा कि वो आपके आसपास ही हैं और वो आपको रेगुलरली सुन रहे हैं। आज के दिन से ये बदलाव करने की कोशिश हम कर सकते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम में एक नाम को हम याद रखें जो भी हमें प्रिय हो, राम कृष्ण या जो भी। आती हूँ थोड़ी देर में, मैं हूँ आरजे खुशी।
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियों में सबसे ज्यादा जो चीज खाई जाती है वो होता है च्यवनप्राश। मैं हूँ आरजे खुशी और आपने सुना होगा कि च्यवनप्राश को केवल सर्दियों में खाना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता है। च्यवनप्राश में जो मुख्य चीज होती है वो होती है आंवला, और उसमें होता है विटामिन सी जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। और अगर आंवला आप वैसे ही खा रहे हैं तो बहुत अच्छा, कच्चा आंवला खा रहे हैं, आंवले का मुरब्बा खा रहे हैं या आंवले को कैंडी के फॉर्म में खा रहे हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन च्यवनप्राश में मुख्य भी आंवला ही होता है, यानी कि आंवला केवल सर्दियों में नहीं खाया जाता, आंवला पूरा साल आप कभी भी खा सकते हैं। हाँ, सर्दियों में विशेषकर हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सर्दियों में तो हमको च्यवनप्राश खाना ही खाना चाहिए। लेकिन च्यवनप्राश एक ऐसी चीज है जो पूरा साल हम खा सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रह सकती है। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियों में कुछ चीजें हैं जो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है, जैसे कि पानी पीना। हमको याद ही नहीं आता है सर्दियों में कि पानी भी पीना है। मैं हूँ आरजे खुशी, क्योंकि प्यास नहीं लगती है ना, मौसम ही ऐसा होता है। लेकिन तीन ऐसी चीजें हैं जो आपको सर्दियों में बिल्कुल करनी ही करनी है। पहली चीज तो बार बार आपको पानी पीना है, चाहे तो आप किसी को बोल देंगे मुझे याद दिला देना, या फिर आप अपने फोन में रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, ताकि आपको बार बार पता चले कि भाई पानी पीना है।

0: हर आधे घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। दूसरा, तेल लगाना, पूरा शरीर सर्दियों में ड्राई हो जाता है यानी कि सूख जाता है। अगर हम लोशन लगा सकते हैं या तेल लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी स्किन के लिए। बाकी तीसरी चीज जो कि बहुत जरूरी है वो है धूप के नीचे बैठना, वरांडे में या छत पे जाकर। और जब आस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं, घर वाले भी सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। ये तीनों चीजें आपकी शारीरिक हेल्थ के लिए भी अच्छी है और मानसिक हेल्थ के लिए भी अच्छी है। मिलूंगी कल इसी पते पर इतने ही बजे। मैं हूँ आरजी खुशी।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुप्रभात, नए दिन में आपका स्वागत है 89.6 डीएसएफएम पे। मैं तनीषा आपके साथ। चलिए आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे तो उसे बहुत दुख हुआ। वो भाग कर एक पास की दुकान में गया और उसके लिए बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन लो। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ कर कहने लगा, आप भगवान हो। वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैं कल रात ही भगवान की अरदास कर रहा था। भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दो। वो आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया और वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है, जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लेना ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। 89.6 डीएसएफएम पर मैं तनीषा आपके साथ।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 DSFM पे मैं दनीशा आपके साथ। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुंह देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ ही सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सके। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने तत्काल उसे फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संतवाणी याद आई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोए। फिर मिलूंगी आपसे यहीं पे 89.6 DSFM पे, मैं तनीषा आपके साथ।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में हम बात करेंगे सन 1991 में प्रदर्शित राज कपूर साहब की महत्वाकांक्षी अंतिम फिल्म हिना के बारे में। फिल्म हिना में ऋषि कपूर साहब और पाकिस्तानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार ने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आपको बता दें कि इस फिल्म में करिश्मा कपूर का भी काम करने का बहुत मन था। वो अपने दादा की फिल्म में बतौर अभिनेत्री काम करना चाहती थी, लेकिन उनके दादा यानी राज कपूर साहब ने फिल्म में चिंटू अंकल यानी ऋषि कपूर साहब को ले लिया था, इसीलिए उनका सपना पूरा नहीं हो सका और वो फिल्म हिना का हिस्सा नहीं बन पाई। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। आज सफरनामे में हम बात कर रहे हैं फिल्म हिना की। 1991 में बनी इस फिल्म को ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा, निर्माण और निर्देशन रणधीर कपूर ने किया। मुख्य कलाकार इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब, जेबा बख्तियार और अश्विनी रहे। इस फिल्म का एक बहुत सुंदर गीत है, चिट्ठियां दर्द फिराक वालिया। इसके गीतकार हैं नक्श लालपुरी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। फिल्म हिना के बारे में बात हो रही है और उसके टाइटल सॉन्ग की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिल्म हिना के टाइटल गीत के लिए जब बातचीत चल रही थी तब राज कपूर साहब ने रविंद्र जैन साहब जिनका इस फिल्म में संगीत था उनको समझाया कि नायिका हिना का इंट्रोडक्शन सीन है जिसमें वो अपने बारे में खुद को बताती है। इस सिचुएशन पर गीत चाहिए, रविंद्र जैन साहब लिख कर लाए। मैं हूँ खुश रंग हिना, जिंदगी में कोई रंग नहीं मेरे बिना। ये सुनकर राज कपूर साहब बहुत खुश हुए और कहा कि बिल्कुल ऐसे ही मुखड़े की उन्हें उम्मीद थी। यही कुछ बातें थी राज कपूर साहब के बारे में। फिर आपसे मिलूंगी, अभी के लिए इतना ही। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: मैजिक रेडियो
1: DS 89.6
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।